गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख भगत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हों मैं मारी है मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करी, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वस्या वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आपको वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा, भगत भी ओ नानो बख्शियन अंतर।

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त कमाल लई गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, कर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई, चोरे वांगू पकड़िए बिन नामे चोटा खाई, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए भाई, अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई, नानक नाम से आए तू।

अंतर नाम मुख नाम है, नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए, नामे वडियाई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वडियाई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमति नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम।

आ बोले नानवे दूजा पाव सुहाओ त्यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कह प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार।

कर दी सब फिरे, बिन शब्द हो न जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई, ना मन निर्मल होए,

पाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

मेल लै एक दरगे मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द

सच निर्मल मन वसाए, सुहागनी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागनी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पग

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आख आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम स्यों सुख पुंचे सब थाए। सब जग चल तो पेखी है नीचल हर को नाओ, कर मित्राई साध्यों नीचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

सिखाए। जिस तू मेले सो मिले प्यारे, तिस कै लागो पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुखते कह न जाए। साची प्रीत ना टूटे प्यारे, जुग जुग रही समाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारा।

सस्य सोई सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

या पंडित आप थिया छछ छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज जान मंगत जन जाचे

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखे बूझे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रया। फफे पाही सब जग पासा, जम के संगल बंद लया। गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत पज पया। बब्बे बाजी खेलन ला।

सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दा।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे। सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलो नड़िए इक प्रेम बिनंती राम। मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम। प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइये, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइये। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम, अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो, आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो, कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये, नानक गुरमुख शब्द पछाणे एहनिस नाम ते आये, मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम, हों मैं ममता माया संग न जाई राम, माता पित पाई सुत चतुराई संग न कम पैना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

विधाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया

ते कबहू ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम। प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै रस

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे।

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम। राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए। रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई। मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता। नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम विसारया ते मन मुख मूड अपागी राम। तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंस दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरुमुख।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए, अस्थिर होवे जन्म मरण।

हर हर करता दुख बिनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत।

पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आमन जान जियो। आमन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वड पागी हर रस पाया। से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगे।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पा...

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखा।

जग उपजै बिन सह बिनस बिनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा।

बाबा समेला पंजवा छंत कर पहला अणगो अणगणा मैं सो प्रभु जी था राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृह वस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभु नैनी दीठा।

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभु सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानिए। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जाको पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग न डरपिय। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना दीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अकलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चित वे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशी के हम पाउनिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावनिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह शिव यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराद हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम्पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पगत वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कै गृह हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कै अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का कै अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तद आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जतन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तम सुखी होए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु रात नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा
पुरख पते भगवान ताकी शरण गही, निरपो पे प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंदक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर पै शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहा, कट कट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया, जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संभुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे, आसा मैला पंजवा चंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत, पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इक्खिनो, तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे, मेरी सेजड़िये अदंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे, मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया, मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुड़ गुपत अतार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी, बिन हंस नानक रंग

सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करें पाप अमित्या तन पसंद तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया। राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी, नानक नरक न जाए कभू, हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सहु आप नड़ा प्रभ संग सोहंती, संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सुरैनी। रावी है सास सास चितार जीवा, प्रभ पेख हर गुण गावी है।

मन शांत आई वजी बधाई ने अंत जाई पाया बिन वंत नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय तरम करे दूत तहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनग्रो राख ली ने मोह ममता सब सजे गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गहे ताके हा काला सब किछ वश जिसे सो प्रभु असाड़ा गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर।

संग देखे करणहारा काय पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह आतारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्बस प्रद एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समाही। आशा महला पंजवा चंक पर अठवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीखण मद विपरीत, हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर। हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास, दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करणा पते। जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते। कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कौन मात, पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गात। मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन, हे कत जीवन प्रिय बिन होत। सनमुख सहबान सनमुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण, हे ओह बेदियो सहज स्रोत। प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना, पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना। श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात, हे प्रीत कमल बंधावत आप। चात्रिक चित प्यास चात्रिक चित प्यास, हे तन बूंद बचित्र मन आस। हे अल पीवत बिन सत ताप, ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना। सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना। गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संत।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राचक मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे तुमने यश राज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये कर्तना लागी वार महला दूजा जे सौ चंगा उगवे सूर्य चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ियार मोका ले दो जुकचा लिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्स बर्स, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, बिन नावे किस खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी।

सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माथो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जान दैसा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा फल करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोक द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकी ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बह रहे करे निवास। सत सबना होए दारू पाप कड्ढे तोए, नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लालच छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूरी।

होए, नानक पाहे बारा पूरे रंग न सोए, पैज खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेब सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पप पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किचना ही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भयो नानकता का दास।

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पुचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गया हारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मोह चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेतय रथ जतय का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहि निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए ताका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अग्गे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जट गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तक कपाह कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूट सपूत। महला पहला। तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न तैरी तग न अखी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गो ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाई तोती टिका तय जप माली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जाहे तरंगा। महला पहला। मानस खाने करे निवाज छुरी वगाए तिन गलताज

जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत्रे परतन रूप, कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए, मैला पैला सबो सूतक परम है, दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म।

काठ के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल अफर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

ना सके रास। जे एक अर्चंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी। चाकर लग गए चाकरी जे चल खसमे पाए। हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे गुना खाए। खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। वजो गुआए अगला मुँह।

आए दुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पावड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार ना।

यो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावो।

आपा पद निर्माण न चीनिया इन विद अभियो न चूके। कही न उपजे उपजी जाने पाव अपाव बिहूना। उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना। ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग। गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मौके पावे डाला सो के दागट कावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम। और

लुंजत मुंजत मोन जता कर अंक कऊ मरना तांते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो रामे जम्पो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े है, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए।

एक तो के संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तकना जा रहा हो। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

सूता मंदल ना बाजे नट पे सूता बुझ गई अगर ना निकसो तुआ रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी पंख न बजेर बाब फूल बिगारे अपना।

कितना वाक समाया, चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा, देह विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, आशा हर

का सार हो गनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। बारह वर्ष बालपन बीते, बीस वर्ष तक तपना कियो, तीस वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर कन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए।

खान करारा तहर ख्वाद न की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हार एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे, रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल खाका। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपने प्रमते। खाका मन कुंचर उर खाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पए दशह बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्याव, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी।

जिन साज पछाण्या तिन स्वप्नी काई, स्वप्नी ते आन छूच नहीं हबरा, स्वप्नी जीती कहाँ करे जमरा। ए स्वप्नी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहाँ स्वाम को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो फूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुरलिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका साथ

अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया, रहाओ बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तबह काहे रोया, जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आपन ते रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूरो पाया, असबड़ पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम विसार हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं देखो, यो दुख कासो कहो रे रहाओ, बाप साव का करे लड़ाई, माया सज मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर गियाना तुम तो जाचे कूपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब सुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मना।

में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर, हृदय लियो बिचारी, हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कह कबीर पुकारी। आशा ते पिता

सदगुरु गचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रहा समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। ऐसा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहरते ही है बुरी। अब की स्वरूप

रहा कहो कबीर जब लहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया ना हो ले राखियो राम जनिया ना हो इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ कह कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आशा रहो रहो री बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत केरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म गतीत आशा करवत पला ना

आशा कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना।

जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंत राई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

आठ पैर अपना खसम के आवो। सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान मांडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध ना ही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे।

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है कांसी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपरे जस नीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधुक मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा ओछा।

तुझे चरण अरविंद पान मन, पान करत पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है।

प्रमत सिरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मये, प्रेम तगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भये। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

हयाती जग न कोई फिर रहा, जिस आसन हम बैठे चेते बैठ गया, कट कूंजा चेत दो सावन बिजलियां।

कर रहाओ। राव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

ताए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो गई जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई, जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले का सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे। सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है चलदिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसे सहजी रहे समाए रहाओ जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सुन रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह आसराओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपासे, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काज कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा, हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे, हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पग पंडारे। जिन दर्शन सतगुर सतपुर

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। होवे दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दिहाई, तन तन सबास।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रवतारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुणबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम से आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम है हर सोचित लावे अमृत बचन सतगुरु की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्षियों बन आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें।

पड़या सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करया।

हारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को बिरला सेवक होर सगले व्योहारी रहा सासत वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर सुनाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेख बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर प्रकार खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन है हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कहाओ। देश कमावन तन जोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

हर जस साध संग मिल दायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो। राव जो कुछ कियो सोई पल माने,

जिस मानुख पे करो बिनंती सो अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन पौ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सेन साथ कित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचित फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे कृष्ण न बूझी सुमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिर

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हरनामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदर सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन

सुई बरंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु नायो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला मोहन प्राण मान रंगीला बासरे।

मुन जोगी शास्त्र के कहावत सब चीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तेती सा तिनकी हैरत कछ न रही।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिन का बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनसो सगल ने होरा। गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ सेती रंग लाए, मन को इह उपदेश।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर गुजी महला पंजवा।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के ते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

काज संग उधार एहु मन आठ पहर अराद काम क्रोध अंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरण ता की आओ चरण कमल अराद हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निकूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम साफ सास ना

अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो।

निर्मल गुण प्रभु गाए, गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी, आठ पह

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बित्तज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रवदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम

ना तद माया मगर न छाया, ना सूरज चंद ना ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार, सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभ नायक, दिन दे तोट नाही पंडार, ऊंदे पांडे कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार, सिद्ध समाधि अंत

शुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर पग

कर कृपा गुरु दर्श दिखावो, हूँ मैं शब्द जलाई। कह जी क्या मांगो किछ रह न दीसे, इस जग में आया जाई, नानक नाम।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अद्वार आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई। पुनरप जन्म न

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सर।

मरणं पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं ते पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ।

हर दिन जियरा रह न सके, ज्यो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये, अपने सतगुर के बलिहारी, मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये, जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मुन सेवे, अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

राजन में तू राजा कहिए, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा,

हरन मदमोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की विध नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मनमुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा, साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पावे।

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी। अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन तो मैं गल हो रहा, निक्षा क्यों कर जाए।

कोई सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपया।

पूरा पाए सी, जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा हो वै खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख में।

इको दाता उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर।

केसनो कूड बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए।

हर सुख दाता मन वसै। हौ मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी जिन्ना हुकुम मनायो न ते पूरे संसार साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार हर का महल तिन्नी पाया जिन हो मैं विच्चो मार नानक गुरमुख मिल रहे।

फुआया। जोगी जंगम सन्यासी पुल्ले ओना अंकार बहु गर्भ बधाया। छादन भोजन ना लैही सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया। पौड़ी माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा। ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाओ प्यारा। जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा करे।

पे रस्म होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाए दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करें से जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी। उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुरु शब्दी खोलायन हर नाम जपानी। हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे भिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिए।

बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसमाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

जै पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यो चित लाया, सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही, ना ओए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे, सच्चे सबल समा।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाया दरगे।

गुरमुख प्रगटैया तिथे शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो महल पगति कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाई चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत नित लखी ना जाए हौं तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्याएन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो

हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। मैला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा। बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या। पहुंच ना सके कोई तेरी टेक जन गुरपूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये। रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेरे के रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रखते से जोन न जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुकम तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादि आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही न होए कट्टे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किश आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

रघुराई गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद जो राज दे ता कमन बढ़ाई जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई तू हर पज मन मेरे पद निर्बान बहुर ना होए तेरा आवन जान रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई जिस तू देवे तिसे बुझाई जिस तू देवे तिसे बुझाई सतगुरु मिले।

तरिये पाओ, जे ओ दियो ता ओ भी देवा, कह नाम दियो हम हर की सेवा, गुजरी कर पहला। मले ना लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए, रमैया आकुल री बाई, रहाओ। जो आकाशे पंखियलो, खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो, मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाशे कड़ुअलो, मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध तां बच रहे।

अवर ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

0: बेसवा जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: सूकर जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: प्रेत जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: बद तिलोच।

सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं अवपूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्नमिदं लोभाद दृष्ट परगृहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

तो तिन मुख पाद सुभा दे रहा हो। टूटे माया के बंधन पाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोयो गुरमोहन, हम विषम कई मुख लागे। सगली रहन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा।

चले हर को संत बतावो मारगे हम पीछे लाज चली रहो प्रिय के वचन सुखाने ही रहे ये चाल बनी है पली लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली।

मेरे मन मुख हर हर हर बोलिए, गुरमुख रंग चलू ले राती, हर प्रेम पीनी चोलिए रहाओ, हौ फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोलिए। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोलिए, गुरु प्रसाद।

साध जना पग चक्ति नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछै चुक्ति छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाई है काट अब घट गया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है पुस्तक करे सेवक मुन के ते तेरा अंत ना कतहू पाई है सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाये देव गंधारी माई होन हार सो होई है राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है कब मुँह मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साध सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता।

देव गुनारी मन सगल स्यानत रही, कर्म कराम हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ। आप मेक पय शरणाई, एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे, शरण कुमारी रही, खिन मैं खाप उठापन हारे, कुदरत कीम न पही। देव गुनारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुर प्रसाद काहू जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है, राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा, प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण पराते। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभु जत पत पेक्षो नैनी, सुखदाई जीवन को दाता, अमृत जाकी बैणी रहाओ। अज्ञान अंधेरा संति काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाण स्यानक संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंधारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज विचारो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवं निधाना, जिनके कर्म लिखा।

से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगर स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम साहा देव नारी महला पंजवा मन के अंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा तरण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित नित हेरे।

विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गनारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्ला ते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिक न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंतिवारे जब चितवो तब तुहारे।

तुहारे, कहो नानक प्रभु मिले मनोहर, मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारे हो, दीन दयाल पे प्रभ अपने, बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ, साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारे हो, प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया,

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनिकित पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान। रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो ना पाई। रविया रे रविया सर्वथान ज्यों बैसंत।

देवगंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह पेथारो हों कर कतराई दिश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ संग।

पाप पिता पाई सुत बंदत अर सुन गृह की नार रहाओ तन से प्राण होत जब न्यारे तेर को प्रेत पुकार आज धरी को नाखे कर के देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव दंदारी में।

निरंजन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहि चित लायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से टोले।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी है मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी है मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सह

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी जो जल बिन कमल उदासे राम गुरपुर में लाया मेरी जिंदगी हर सज्जन हर प्रभ पासे राम तन तन गुरु हर दसिया मेरी जिंदगी जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी अमृत गुरमत पाए।

हर हर नाम से आए राम, हर ताज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुख खीरे राम, हर दिन शांत ना पाई।

ये गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूर्ख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदड़ी ये सब हर हर नाम से आवे राम पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदड़ी ये नित हर हर हर जस गावे राम वाण त्रिण सब आकार है मेरी जिंदड़ी ये मुख हर हर नाम से

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

छत्ता पहला बिहागरा महला पंजवा संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जन का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखरा साज गुरमुख, हर दरगह सो

कर जोयो संत इकत्र होए मेरे लाल जियो। अविनाशी पुरख पूजे हाराम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। ए मन तन सब अर्पे हाराम, मन तन तन सब प्रभु केरा। क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी। सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुरु नाल सुनेहा। जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम। हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम। सर्वे समाना आप स्वामी, गुरुमुख प्रगट होया।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राज जहागरा महला पंजवा अत प्रीतम मनमोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया ऋद सिद्ध नव युद्ध।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए,

पौड़ी। सब तेरी तू सब सदा, सब तुद उपाया, सबना विच तू वरतदा, तू सबनी प्याया। तिसगी तू भगत खाए पाए, जो तुद मन पाया, जो

मन पर कीक न आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख।

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

बंधन तोड़े सचवस है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे किसे का, जिनकिया तन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया, जदों आपे खात किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख,

कहे कथे ना पाए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तह के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड कमावे कूड संग्रह कूड करे आहार दिख

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर से

पर दूजे सब आपे इतने आपे करे आने इतना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने जिना आपे गुरुमुख।

आपके नाल दोस्त आप उपदेश है आपके सुगर स्वरूप सियाने अपना चोज कर देख है आपे आपे सबना जिया का है जाने। श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवे हर सो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी।

नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न फुले कभी, सब सच।

छौर कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो। सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो। नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अगे हर्ष्यों केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे वनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे, आपे ही मुह पाए। आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए। जन नानक वडियाई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए। अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पावे।

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे।

तुर खसने का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभाल दम न बिरखा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा साहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन साहो सब पदार्थ पा

नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे तेती जोग न होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार आपे सूखम

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करू।

एक को सच वर्त है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वधंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जाप पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वदाई देव।

के मन नाम निदान कूप आए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड्डा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच भगत ना हो वई, हुक्म ना बुझिया जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया। नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर तेती।

रहाओ लाख भगत जाको आरा दे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वढ़ंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अवनासी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वढ़ंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को सब

जिन्हें तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी। इत उत देखो ओत तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता। नानक साधु देख मन राता, वड़हंस महला पंजवा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हों एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हों क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली ता बेसा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए। हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ।

सच तुन सच शब्द विचारा अंजन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विचों बल जाओ दासन दासा हो।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सच गुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित्य संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सबको करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता को प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए पला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जात दे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जात दे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया। कर्म होआ तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एत परम पुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी। सेवक सेवे पाओ कर लागा साओ प्राणी। साओ प्राणी तिना लागा।

राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कभो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हौं बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे। जब

जुगें जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी सिच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम, आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती, उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर के रंग रती मोये, सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये, पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी, कंक सवारी हर हर स्यों निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये, फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली, फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा, फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सोहागनी जाए पूछो मुये, जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुये, जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी, अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया, नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया, हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुये, निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुर पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब

हर राजी जय अन दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले की जय। गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए। हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

कोई पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे संपर्कियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बसे सोई गुर प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हों में माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परिया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय नानक नाम रते से निर्मल होर हों मैं मैल परी जय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करें पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाए बिख का कीड़ा बिख्यों लागा बिष्टा माए समाए जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा नानक नाम रते तिन

गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे भंडारा, गुरमुख होवे सोई बूझे, सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले।

बख्श ले। फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा। नानक नाम रते से सच समाने, बहुर न पव जल फेरा। माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के, पज पे हर सरना।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम, हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम, हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए, मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुरु दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर आपे मिले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे अवर न करना जाए, बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे सतगुर।

फल जन्म किन बिरछा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श ना करियो, जिनी हर हर नाम ना प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया, हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वड हंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल।

कलग हत जीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया हरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनुत्तरंगा गुरमुख कृपा लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जीतिया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा वासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचा।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहज जीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता। कहो पाना ता कृत अघाए राम।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

जन सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम दिनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कन्हिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये प्रभु त्याये मिटे जम के त्रासा गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा तज मान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाये दिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याये दरवाजे अनहत वाजे राम कट कट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा आप उपाय आप

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पे दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा।

सातन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग अंदिन रस पोग। सातन मैल समाणी, जिन प्रयो जाता कर्म विधाता, बोले अमृत बाणी। गुणवंतिया गुण सारे अपने, कंठ समाले ना कदे।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्दे ना जानने काम क्रोध में आस सतगुर का पौ छोड़िया मन हठ कम ना आवे रास जमपुर बदे।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुरु।

दाता, हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत दाता, हर नाम दिया गुरु।

पे। सतगुरु मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

हार। गुर शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही, होमे जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे, नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताक बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया, संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा कृपा से, विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर।

तुम उपजे दतमत्तर ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बौराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रै गुण माया परम पुलाया होमे बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा होमे विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

कुछ नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिज्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खेला।

आपे शब्द समाहा, आपे लेखन आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओ माहा, अंदिन अंद होवे वडपागी, ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावल।

कर बालक रूप उपायदा प्यारा चंदूर कंस के सुमारा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूर्ख मुगदा सब आपे जगत उपायदा।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अंदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन बेदया हर दिन रह न जाई

हरस अंतर पाई नानक दीन दयाल पए हैं। कृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा। अचर चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तां पीतर तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई। गुरमत राम नाम परगासो सदा रहूं शरणा।

का हर नाम समान, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

तू सर्व जिया दयाला सब किछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछु होए गुर पूरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, किस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

हो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना मैं बिचरे मोत चसाई रहाओ रे मन मुग्द अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुराई कोट पराद अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहज।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे। नानक तो गुरु पूरा पेट्यो, सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेख है सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहां सुख आगे मुख उजल जन का संग वड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी कोट संतन की आही। बूढ़क मोह गृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला जा के हृदय वस्या तू करते ताकी तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरै नाही चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सब ते ऊंच बढ़ाई। रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस करे दयाला ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे। शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही। फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा। पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया। जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाओ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु सबना कर तू धारा। कहो नानक गुर बिन नहीं करिये ये पूरन तत् बिचारा। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा। किलबिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे। पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई करण कारण।

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भये अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

मन तै को देखा सुनमी ताहो तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुनमी ता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी हर्ग जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराध न जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूरी रे देखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत

ते भयानक भया करे बेनती राज ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जिसको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकड़ी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी।

प्रकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो तुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साव लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करो कला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर

त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे खाद संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन

तो उतरिया मन का सोखा कर्म राय अब कहा करे गो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

तू अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर बिद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वाले वा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुग

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बासुत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक सा के पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसे काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकी कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू।

तेरा तज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अधाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाए जब तक समझम ज्ञान पत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकी पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की फाता कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगासा सूरठ मैला पंजवा करण करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया।

दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु ध्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता रहाओ। सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अविनाशी। ताको विघ्न ना को लागे, जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृद अंतर, अमृत हर रस्ता के। कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हो मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, पर बारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न का

कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी हर आचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख मासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अम दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो कब हुआ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहा बताओ कारी जित हो मैं गर्व निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

समायो सोरत महला सन्यवा जाओ कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर को मंथन जीरे।

पुरुष महिला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ बिसर नाही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा से क्यों वड़ पागी जन नानक कतह न पावो सूरत महला समझवा जा के सिमरन सब कछ पाये बिरसी काल न जाई किस प्रभ त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग में।

जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संत प्रापत, तिन पेटत दुर्मत खोई,

फेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

कीमत कहण न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

रास राख ले हो पाई मेरे को तब आगे अरदास रहाओ जो मांगो सोई सोई पाओ अपने

बुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। साचा साहिब सद मेरवान, बंद पाया मेरे

ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ।

राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली रहाओ सतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहित का परवासा बख्श ले सब सत

हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पे दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवे सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ

गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराछत लाथे, मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा, जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकट द्वारा, सब सृष्ट करे

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर।

अंदिन सुकृत करिए रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए, कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सितलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लक्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रख।

आई सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

अपने दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जू पाला रहाओ। वडपागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वडपागा, हर अमृत बाणी गावे, सादा की दूरी नावे, अपना नाम

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बासत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जी

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

निमाणिया तू मान निकीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहा। जैसा बालक पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम्हारा

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दया।

नाम की वडियाई आप पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमर।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरुष विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जाती,

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम ते

जो खुद भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया।

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हर दास सुनी।

हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी।

दुख रोग का डेरा बनना परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना आनंद करे नर नारी। हर हर प्रभु।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे। ज्यों माता

गुरपुरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला।

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरनी पाई है दर्शन पेटत होत आनंद।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस्त्र दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनित पार उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिद पूरन खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहु बाता भगत सिर

गवार अजमू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो।

जब ही निरतन देखियो नर को संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

मत साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले, तावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई, पिखिया नाम रजे।

आपसे ज्ञान अगामम। जिन चाखिया से साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथय का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले तामत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई। एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा। सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खानं। शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म तर्म बंधकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी। एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ। शास्त्र वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूकी पाई अंतर मैल विकारी। इन विद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कै पारी दुर्मत कणी विगूति पाई दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाई है पाई बिन नाम में परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आमन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूर बोल बिख खाई पंडित दही विलोई है पाई विचो निकले तथ जल मछिये जल देखिये पाई ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिये पाई कट कट देओ अलख एह जग तागो सूत को पाई दैदिस बांधो माए बिन गुर गांठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई कहना किछु न जाए गुर मिले पौ मन वसे पाई पै मरना सच लेख मज्जन दान चंगियाईया पाई दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ महला पहला। जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

ये पाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मांझिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महा रस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल में बूढ़े तेहे गुरबिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तें दे बैसर बोले मीठली पाई साच कह फिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अधिक रही हर नाए सबको आखे आपना पाई गुरते बूजे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अधिक सके लिए पाई पावक रंचक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुवाए सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाथ समार पचाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम पुलाया हर जी ए तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई रहाओ भगतां नू जम जोहे ना साके काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वस्या नामे ही मुक्त पाए रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुभाई मन मुखा नू प्रतीत न आवे अंतर लोभ सुआओ गुरमुख हृदय शब्द न भेजो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका लाओ भगतां विच आप वरदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विदाता हौ मैं मार मनसा मने समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारन हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाने बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दर साचे सचियारा ओना दी सोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौ वारी हौ वारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन दित्ता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई
تنکے ہوں لاگوں پائے جنم سواری اپنا پائے کل بھی لئی بخشائے سچ بانی سچ شبد ہے پائی گر کرپا تے ہوئے نانک نام ہر من وسے پائی تس بگن نہ لاگے کوئے سورٹھ میلا تیجا ہر جیو سب دے جاپدا پائی پورے پاگ ملائے سدا سکھ سوہاگنی پائی اندن رتیاں رنگ لائے ہر جی توں آپے رنگ چڑھائے گاو گاو رنگ رات ہو پائی ہر سیتی رنگ لائے رہاؤ گر کی کار کماونی پائی آپ چھوڑ چتلا

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावै जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाए नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा के कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपाल।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाव मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुरु राख

तीजा सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाए पौड़े हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिनी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुर पूरे वे खा लिया गुर सेवा पाई है। श्लोक महला तीजा। ज्यों तन को लू पीड़िए रत न पोरी डेहे।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाज लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके अड़ अड़ तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम कुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा होमे शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया काल का।

फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाए, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो सेवै सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवै से ही पुरख जिना हर तो

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरतै इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे इहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर।

पाए नानक गुरमुख मिले वडियाया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले साहर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप

है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार।

पाए। सतगुर अपने घर वरतदा आपे ले मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

आए। नानक जे गुरुमुख करें सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हों बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आए।

कीरत फल पाये जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भगति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिर कै पाणे।

हो कर कर फिरे कसुद्ध मन जो तरकत नारी वद पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लग गया है जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हूँ।

हौं वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैनी। श्लोक महला चौथा। हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वश है जो जंती के वश जंत। हर के

सतगुरु मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा दिखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है।

ऐं मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कबू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभु साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभु पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पर पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजे।

परोया निज पाव पया परम पागा गुर पूछे मन पतियागा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया।

तिखारी। अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज अंग पर संग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट को

पानी। आपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास पग

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

चुप चुप हो रहा हो तनाश्री मेला पहला। हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोहत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेव हो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा। नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वह सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नदरी नानक नहीं कोए, तनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

तनासरी महला पहला। चोर सलाहे चीत न पीजे, जे बदी करे ता कसू न छीजे। चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सचियार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाणा, फोटे का मूल एक दुगाना। जे साथ रखिए दी जैर लाए।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पैरा, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप करे सगले कुलकारे।

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

कहो। सहस मूरत नन्ना एक को ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो पिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंजनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम।

सहज प्राप्त होए रहाओ। शब्द दीपक वर्तै तेह लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाख्या सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा।

अपने पथ खोए, गुरु सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पथ उत्तम होए रहाओ, गुरुमुख उबरे हर शरणाई।

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत काला ही सच होई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम बिटो, करण कारण सब

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। तनाश्री मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे नौ सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल काटी कटक उतारी। हर हर जपन जतो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनाश्री मैला चौथा हर के संत जना हर जपियो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मिस कह न सके।

लागी। नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूख पुकानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। तनाश्री मेला चौथा।

नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा, कल युग का कर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगत एकाकी रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साख जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय, कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा, कर पंजवा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम, मनमोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुरपुरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट, हर संग हरी सब संग भय। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नव छह खट बोले मुख आगर। मेरा हर प्रभ इव ना पति ने, जन नानक हर हृदय सब प्यावो। क्यों हर प्रभ मेरा पीने, तनासरी मेला चौथा। गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे, हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी, हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर। हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ, हर कृपा निध कीनी। गुर भगत हर दीनी, तब हर से प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याय, हर होए संतुष्ट इन पान। हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत। सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीरत कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मेला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ, शरणागत प्रतपालक हर स्वामी। जो तुम दियो सोई हो पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजे। नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। बोलो पाई हर कीरत हर कर जल तीरथ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो। हर कथा जिन जनो जानी रहाओ, आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, अवर सब त्याग को है हर पानी। तनासरी मेला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख।

ज्यो पावै त्यो रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा घर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

उसी हेत बिदारा। देख पुटंग लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना, अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सद केला। सनासरी मैला पंजा, कर कृपा दियो मोहिना।

पूरन हुए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी, अलंकार मिल थैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुरते जाना। तनाश्री मैला पंजवा, लवे

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगनासे, भगत बांचे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे, सेव एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत मनो सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद है जीत, जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत, साध संग इन दुख से निक्षो, नानक एक परीत, रात्रि मैला पंजवा। पानी पखा पीसो संत आ गए, गुण गोविंद जस जाई, सास सास मन नाम समारे, ए विश्राम निद पाई, तुम करो दया मेरे साई, ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ त्याई रहाओ, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिनस जाए परमाई, अनद रूप रवियो सब मध्य, जब कत पेखो जाई, तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए, मुक्ते निमुख बुलाए, जाप पाप पगत खा पूरी, जो प्रभ के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई, तनाश्री मैला पंजवा। जिनकी ने बस अपने त्रै गुण, पवन चतुर संसारा, जग स्नान ताप थान खंडे, क्या ए जंत विचारा, प्रभ की ओट गई तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाए, बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ, न सुनिए न मुक्ते बकिए, न मोह ओडी थी, ऐसी ठगोरी पाए पुलावे, मन सब के लागे मीठी, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मेलियो दुआ, किसी वाद काट किसी ही पे, सगले लर लर मुआ, हूँ बलिहारी सतगुरु आपने, जिन ए चलत दिखाया, बूझी पाए जले संसारा, भगत न व्यापे माया, संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक तन पाया, अपने कर ले आया खाटे, तनाश्री मैला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खत्म हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे, जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लही है रहाओ, कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझा।

सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहुदैन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखर न जाई लैन राव जात ताप चमन गसबा कर उर्द ताप ले गैन ए बिद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

मनवा बहुर न कछु तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्को अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनसो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरुष प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला तासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुने पुने बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो अपना कर।

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल कारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस देश।

काल संग ना चाले तिन स्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गवारा रहा साथ तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचियो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के पगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम दे कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कत डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रात मिल साध संगत होवत प्रगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही पगत जे साचे भाने जम काल ते पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संती ए विद जाती तना श्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में

अनब सदा उलास रहाओ, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आए। ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये, दिनस जाए जो निमक में सो अल्प सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जा का रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभ, रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम तेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, अनद मंगल गुण गाओ, सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन खाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खसम निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जय कार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किश ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है सीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल चले लोभ मोह, माँ पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कर अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जप सत मोहि रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जा ले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनासरी मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनासरी मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा होए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनासरी मैला पंजवा, जान को हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जां का सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनासरी मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उठ ताके उठते उठते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुवर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनासरी मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस न कतहू जात सतगुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ये बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदात नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे।

प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत, मुरार सहाय हो दास को, कर गए उदरो मीत रहाओ। सुनी बेनती था कुर मेरे, खसमाना करे आप, नान के आनंद भय दुख पागे, सदा सदा हर जाप। सनातरी मैला पंजवा, चतुर दिशा की नो बले अपना, श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंस लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शा।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोखे कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया

निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला हुआ, जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक का डे मार, सनातनी मैला पंजवा, कर नावा पड़ताल।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काट ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साधु पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहा राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वडे भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम से आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण से आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मैला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मैला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक न जाके, कंचन लो समानो। हर शोक तेरे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मैला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो उदर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे हर रस चोग चुगे प्रभु पावे सरवर में हंस प्राण पत्तावे क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पे निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाके हावन जान रहे गुरु राखे सरवर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सरवर में हंस हंस में सागर अकथ कथा गुरु बचनी आदर सुन मंडल इक जोगी बैठे नारे ना पुरख कहो कहो कैसे त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई सुर नर नाथ के शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरुमुख भगत सहज विचारी भगत वचल तय काटन हारे हो मैं मार मिले भगतारे अनिक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक तीरज तरम तरनी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पौ पागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप सनासरी मैला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना स्मरण ना आवन जान ठाकुर में दास दास में सोए जय देखा तह अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाये बिन गुरु पे ते मर आये जाये रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन में मनुआ मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ के लागे पाए सतगुरु पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखे हथ ना पतीजे ना बहुतेखे कर पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पर फूले चोटा खाए बहुत स्यान पावे जाए नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पे उदासा मन मैले सूचा क्यों हुए साथ मिले पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आज जुगाद सहज मन तीर पल पंकज में कोट उदारे कर कृपा गुर मेल प्यारे किस आगे प्रभ तुझ सा लाही तुद बिन दूजा मैं को नाही ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पा

उड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत फाद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसो रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर से मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद न चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने विवेक हीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे। मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी। तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाच।

बिना गुरुवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किल विख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुर कुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे। बेड़ी ता संगम सत सते, आराद एकंकार साचा। नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मान्या मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई। नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। तनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाऊ।

अवगुण यारी कंत विसारी छूटी विदन रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रली आला जो बन बाला तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक

अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरे सब संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो हम दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हो मैं रोया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया नामो नाम मिली वडियाई।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत न...

केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिबै बड़ियाई, अंत न काहू।

हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कच नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जोजन चक्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बहुर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तम ही छूटो, जो माया नह लिपटावो, माया नाम गर्व जोन का, ते तज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बाल।

रे मन रामैया बारिक कौ जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क नचा

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे।

का नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत

मफी तसरी। विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी, अनित तात्विक हरता त्रिभुवन नाथरी। तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी, कर्म कर कपाल मफी तसरी। अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर, शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मफी तसरी, दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण। बन फल बिसल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कछोटी मफी तसरी। पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी, कर गेहन ताचे मोह जापी अले। राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला, नित मंगल राजा।

रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे पीपा। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो

तारहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सब्जी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी तार की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुरहास तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड़ पए है मनमुख ते मोह माया नित फाखा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दी जय जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी

हम परे पाग तुम पाखा, जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी। पाखान डुबत हर राखा, जैत श्री महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुरु साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे हियरे, मेरे प्रीतम नाम पराना। दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वै खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री महला चौथा। सत गुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जय श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी दे फिरें दिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वड पागी। सब किलविख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वड दाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वड पागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर। हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा, कर दूजा इको ओंकार।
सतगुरु प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुरु पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

जिस होए कृपाल सोई विध बूझे ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को ना सहाय। मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदह तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी पूमन चतरांगा संग न चालियो इनमें कछुए ऊट सिदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाये नानक की हां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा करती जा दुपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जय श्री महला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो। बेसुमार बेअंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जय सरी महला पंजवा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से परम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंक छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याद न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद पाई।
दया मया कृपा ठाकुर की, सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय, जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे में दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनेक बार करो ते बंदन, मने चरावो तूप, हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे, दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक, काड ले हो नानक अपने को, संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर रहाओ, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचे सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते, महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पहला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी।

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी। जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम। ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

ला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो ए संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तुहारे, पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जग तुम्हें हर को, कबहू नाए संभारा, नानक शरण परयो।

सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे

जाने हौ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख तरम दूते डिठिया किर्त कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास में

जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सों सोई है कर अनर्थ गर्भ।

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबर।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिष्टं नचमिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच

मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई, वडे भाव सत्संग।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

गुरु नानक पतत उधारणे भोजन भिखम असदाम गुर बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साज संगत स्यो एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावें बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो

अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गाओ आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगारे।

योग मुख उजल मन निर्मल होई है तेरो रहे इहा उहा लोग रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा मने चरावो भोग छोड़ आपत बाद अंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा हवर न करने जोग तोड़ी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखे छूटे हम निर्गुण लेहो बारी सद बख्शिंद सदा मेहरवाना सबना दे अधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लेहो ए बारी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन सांत सहज रहस्य मन उपजो सगले दुख पलाए रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहुते छूटे पवजल जगत तरायन खोजत खोजत तत विचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके सच का पंखा थाट्यो खात खर्चत किच निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोग सवाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी तातन को इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे ओए उहा ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाय माया रत बंधारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप

कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके ग्रह

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान, रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर, रहाओ दह विसरव रया जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कहो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिद्धदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पय विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस दे का ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहा।

गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर वचनी बहुड़ न संकट द्वारा नानक सरन।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाय रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सिमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूर्ख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम ले कही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे बेल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे

पर पहला दो पद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुन मन अकथ कथा हर नाम रुद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहा। नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ। किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए। राज तुलंग महला पहला कर पहला

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में बिन सह सब झूठ मेरे मन त्याय रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छदाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गा है। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौ नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बाँचो दूर। तिलंग

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार

हरतिया कथा कहानिया गुरमीत सुनाया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की पिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन परानी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गल लाया जो गुरमुख नाम के आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उड़धारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस परे पसाओ है गुरु विट्टो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुखो सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने हो सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहिब हो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर इक रंग है आपे बहुरंग

मात पिता सुत बंग जन सुत जातियों की ना जियो छूटियो जब देहते दार अगन में दीना। जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन सुमानो। तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान लै मेरो। रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

जिंद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कै दो प्रभ सरनाई। तिलंग बाणी भगता की कबीर जी इको अंकार सतगुरु प्रसाद। देव कतेब उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना सिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

क्या करें, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आने तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा

दूध करम कुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित अक्षर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न

अंतर्व से ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सो चाकर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जे गुण होवे गंसड़िया मिलेगा कोई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई, आवा गुण निवारिया है साचा सोई। होमे मार निवारिया सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला। नानक तह कहे लियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा। सुई महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करे पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाने सर प्रकार सी, तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया। अमृत हर का नाओ देवे दिखिया, चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया। जा को महल हजूर दूजे निवे किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस, कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते।

पहला पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तो हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाओ आप वर्ताए सी चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा के लोग सुनाए सी नानक आप

पपिया होवे पपकने तीर्थ मल मल नाए तेरा सदना सुनीजे पाई जे तो बह अलाए रहाओ जैसा बीज है सो लुने जो खते सो खाए अगे कुछ न हो गई जेसन निशाने जाए कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना आवे सो दम दिरथा जाए ए तन वेची बैकरी जे को ले रिकाए नानक कम न आ

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना संगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश जी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे का कैसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

आपे तो लहारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जावे।

मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन प्रबोधिया हर किया रस गट के रहाओ सब संगत उत्तम सत गुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा तार मेलो सत संगत हम तोवे पगजन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाठी किस किस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम देखियो सुर गुर के जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम सब दिन से दाल दलगा तौ जन्म मरना मेट्यो गुर सब दी हर अस्थिर से सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अतिरगा मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए सुर वेश लियो मूल महंगा रहाओ नरपत राजे रंग रस मान दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर दंड लगाना सिर पछताने हाथ पलगा हर रात रात जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतपलगा दर्शन संत जो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी मोको की जय दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सर तुमगा सुही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ है रंग गुर पुठ है हर रंग चालिया फिर बौर न होवी पंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर पुठ है हर उपदेशिया हर के त्याराओ निसंग रहाओ मुंद आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग हम नैल परे दो चारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किलिस पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सत्संगत मेलो संग निरसंगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग सुई महला चौथा हर हर करें नित कपट कमावे हृदय शुद्ध न हुई अंगिन कर्म करें वो तेरे सुखने सुख न होई ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई कोरे रंग कदे न चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ जब तब संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पायो सुआई बाहर देख बहुत चतुराई मनवा जय विस्तावे होमे दया प्यार सबक न चीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो गूंजे सोजन नाम ते आए गुर प्रसादी एको बूजे एक

गुरुमत नगरी खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुरमस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साद लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग।

सो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध स्त्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

मैं होर काओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुझ पे आप सुनाई है, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत कराए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्ण मां दियो त्रै गुण, रोगी विच हो मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया,

रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करियो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद निचान, जन नानक।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजै अभिमाने। तैस्यो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देखा दूर। सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंतरी।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड़ियाई, तुम सुखदासे पुरुष सुभाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिखे नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो ना।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बतावो मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

ऐ खरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा कै दरबारे निमक निमक वसे तिस नाले हों किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा उहा संत करे हर रंगा चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा दोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे पेट संग ए पवजल तारे।

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी। रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

ता नहीं जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पाव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सदबल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने

प्रबल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

नानक दास प्रभ कृपा धारे। सुही महला पंजवा अनक बींग दास के परहरिया कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए जो तिस पावे सो परवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए दीन कह कोसे दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहे।

सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी, रैन दिन गाओ, जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ। सो साहो सेव जित तोट ना आवे, खाप खर्चत सुख आनंद विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बन आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान।

जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसे तिस मेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवन हार, राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सुजाना, सुही महला पंजवा। बैठी जात करे दृष्ट ना तारक, मिथ्या मोह बंदे नित पारक, माजरे पाज दिन नित रहने, जन्म पदार्थ जीत हर सरण, रहाओ सर्त विकार दो कर चारक, राम रतन रिद तिल नहीं तारक, परण पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुही महला पंजवा। साध संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पाप जायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिप्त हुए सांप पाई है, शरण पे जप दीन दयाला, नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना, रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंदिन माते, वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उदर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया, गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने, रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए, सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई, सुही महला पंजवा। करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार, रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ, सुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा

दया न पाए, अनेक जन्म बीतियन परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन सं

कामना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए तीसन पीस ओट कामरी सुखमन संतोखाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर देत्या जे रच लो भाए सब किछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए सुही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर तुलाओ शीश निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिस्त बचन बेनती करो दीन की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निद पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया।

अब साधु संग परिया हर द्वारे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुझ पावे सो परवान मन तन तू है आधारी राव तू दयाल कृपाल कृपा निज मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रैन साथ साथ गुण गावा जे स्वामी तुझ पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुझ पिराई निर्मल होवे देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे दिल लाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन के

आहा निमुक्त मृत जी छूटे संतोषागर पार उतरिए। जे को वचन कमावे संतन कहा सो गुरु प्रसादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजनी स्नाना किस कल में महल पर ही जय। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते छिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपनी।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, किन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पए निकाने, सुही महला पंजवा, माँ अगन ते तुद हाथ दे राखे, पए तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंध कूप से काढ़ लिए तुम आप पे कृपा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम दया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख लाए।

शाही सच्चे से पी राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पी।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

अमृत वचन हृदय और धारी तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझेवड़ अवर न कोई। जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नहीं, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

तिसका जग पीतर सास संग नाव जाते। सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आते। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंस मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना फुल टंग ना मीठे बैना। रहाओ सह सिदार कामन कर आवे, पां सुहागन जा कंते भावे। ना किस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावे।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रते रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे सूचित

अवगण मुट्ठी जे सिरें बदक खाए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी पुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। बिन शब्द तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते हैं। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते हैं। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटों, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार्य सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कौन चढ़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफ सच्ची सलाह, पूरे गुर से पाए। तन मन सब किच हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। एक को सच्चा सब में वर्ते, विरला को विचारे। आपे में ले ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वर्ते, गुरमुख कोई जाने। जमन मरना हुक्मो वर्ते, गुरमुख आप पछाने। नाम से आए ता सब गुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिस दा सब किछ होवे, जे विच्चों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अब सुवालियो। फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन। गुरु का शब्द समाले, हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर संकिच वसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला, काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए गुर के शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, इह मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईए, मोल कित ही नाम पाईए, नाही नाम पाईए गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, गिरना में दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमकुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिले।

मनमुख मन न पिजई अतमैले चित कठोर सपे दुध पियाय अंदर हिसने कोर। आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे तां सच बनया सीगार। सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन। हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पया किरत कमावना कोई ना मेटन हार। संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार। गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए। हो मैं मेरा वड रोग है।

जाए। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाए। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे ना।

बिख्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मो मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे, बसे क्रोध शरीर चंडारा, अज्ञान न सूजे महा गुबारा। प्रमत व्यापत जरे किवारा, जान न पाये प्रभ दरबारा, आशा अंदेशा बंद पराना, महल न पावे फिरत बेगाना। सगल व्याद कै वस्तर दीना, फिरत प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियानत उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह नेकन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो।

नाम से आवे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसर तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया दरगह पैदा जाए जियो। ऐखे सुख मुख उजला इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो। मन से कबो न विसर जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत न पाये ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व में तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा अष्टपदिया कर दसवां काफी इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जे कुली जे चुकी साई पी तहिं जी काडिया। जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया। हौ ना छोड़ो कंठ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया। जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल। यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाग जुलाई पंध तो नई दर्श दिखाल। श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै कृपाल। कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया। तू साही हू साहो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हक बदानिया। चुप पोरी नजर निहाल देह दर्स रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किलविक वंजन दूरे। सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए। पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया। नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे। जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह रहाओ। मोह बाद अंकार सर पर नुनिया। सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया। नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया। नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते। बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया। अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के। जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

पहला कुचज जी ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचज जी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुर क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सो रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सो पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो सुही महला पंजवा गुणवंती जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निवला गो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

जियो हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया फसाओ जियो मैं बहुड़ ना तिसना पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो जो गुरु

जो बन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की

पैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोरे बलराम जियो, सारा हुक्म रजाए सोना टले जो प्रभ करे बलराम जियो। कृपाया करते कर पाया नेत न सके कोई, जांजी ना उन रहने केवल रव रहा त्यो लोई।

बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पाइये बलराम जियो। रहती देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो। साके फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए। नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए। राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंजन मेल कया मन मानिया कर मंदिर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजन आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल पै देवाने मन राखिया गुरु ठाए नानक अवगुण सबद जलाए गुण संगम तब पाए राग सूही महला पहला कर दीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुवाए नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदासे तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नाम राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हौ विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

गुरु प्रसाद। राग सुई छंत महला पहला कर चौथा। जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया, दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया। वियाहो हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया, जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया। हौ बलिहारी साजना मीता वरीता, ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता। लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे, जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे। सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता, हौ बलिहारी साजना मीता वरीता। गुणा को होवे वासला कड वास नहीं जय, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय। सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए। पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। जिथे जाए गई है भला कही है चोल अमृत पी जय। गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय। आप करे किस आखी है होर करे न कोई, आखणता को जाई है जे फूलड़ा होई। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाद कहे है दान हर मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे ना कोई। सूरी महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले। इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई।

गुर कह मोल कराया, आप नड़ा प्रभ सहज पछाता, जामन साचे लाया। तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा, क्यों मिले होए पराया, साहिब सो सलाहिए जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता, प्रीतम स्यों मन मान्या हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारया, पंच को नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सवारया। हम अवगुण्यारे तू सुन प्यारे, तुद पावे सच सोई, आवन जाना नाची है साची मत होई। अंजन कैसा अंजी है, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जाओ।

कौन अपेवे। तंस मंस पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया। अंजन नाम तिसै ते सूजै, गुर शब्दी सच जानिया। साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करें रलिया, करम तर्म सबाया। अठ अठ तीरथ पुन पूजा, नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया। साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेतिए क्यों पादर जाने, आप सहमत होछिए क्यों राह पिछाने। क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली। विन नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली। दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे। कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेठी है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा ता करे सत शब्द पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

कोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल ना पुले जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो जन

ओ तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। दै जिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुवाया। हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोभा पाया। सुही महला तीजा, सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम। हों मैं सब किलब काटे, साथ रखिया उधारे राम। सत रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर पाव जल करन न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच मिठा लिया सोई।

राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए हम दिन सच आयन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे चित का सोयला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वर्ते सच्चो बोले जो सच करे सो होई जय देखा ते सच पसरिया और न दूजा कोई सच्चे उपजय सच समावे मर्जन में दूजा होई नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

सुख होई। सतगुर सेव कन बालड़िए हर वर पावे सोई राम, सदा होवे सुहागनी फिर मैला वेश ना होई राम। फिर मैला वेश ना होई गुरमुख बूझे कोई, होमे मार पछाणिया करणी कार समावे सबद समावे अंतर एक हो जाणिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची शोभा होई, नाम कामन फिर रावे अपना रव रहा प्रभ सोई। गुर की कार करे तन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम, हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सत समाए सत वर कै सब थाई, सच्चा शिगार करे दिन राती कामन सत समाए। हर सुखदाता सब पछाता कामन लया कंठ लाए, नानक मैली मैल पछाणे गुरमति हर पाए। सातन बाली तुर मेली मेरे प्रभ आप मिलाए राम, गुरमति कर कांगन हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम। प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूरब लिखिया पाया, शेष खाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया। कामन निर्मल हो मैं मल कोई गुरमत सच समाई, नानक आप मिलाई करते हैं नाम नमें निद पाई। सुही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम, अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम। अनहद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए, हर गुण गावो नारी अंजिन पगत करे गुर आगे सातन कंठ प्यारी। गुर का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाए, नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए। भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम। निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी।

चित तन मैल न राखी, हर प्रभ राखी, मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन आवे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वड्याई, प्रभ रावे रंग राती। फिर रावे रंग रातड़िए, फिर का महल तिन पाया राम, सो सहो अत निर्मल दाता, जिन विच्चों आप गवाया राम। विच्चों मोह चुकाया, जहां हर पाया, हर कामन मन पानी, अंजन गुण गावे नित साचे, कथे अकत कहानी। जुग चारे साचा एको वर्ते, बिन गुर किने ना पाया, नानक रंग रवे रंग राती, जिन हर से की चितलाया। कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम, गुरुमति मन निर्मल।

हर कै सबद सुभाए राम, मिल सबद सुभाए आप गवाए, रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया, हर हर नाम समाने। नानक सुहागन सावड़ पागी, जो चले सतगुरु भाए।

प्रभु दूर वसै। इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभु एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

आया, हो मैं रोग गया पौ पागा, सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत् कर पोगो, अंजन सुखमानी नित रलिया, नानक तुर संजोगो। सब संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई, आया बलराम जियो। संत जना कर मेल गुरबाणी गावाया बलराम जियो, बाणी गुर गाई परम गत पाई।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूर विहाजे, कूर लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन कके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ करे न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुरु गुरपुरा।

गुरमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभु पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहे रिलाए, वड्या पाग गुरपूरा पाइए, अंजन नाम ते आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

सात शब्द विलाई अंजन सहज रहे रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाने अवर न जाने दूजा सब में रव रहा सो प्रभ अंकर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रविया सोई गुरमुख सच पाये सहज समाय तिस बिन अवर न कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे ले मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे एनस नाम ते आए ए जगो दुतर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

मन दैद से चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आशा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम सलाहे तू, बिन नावे पच पच मोया, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया।

राख लाज पदवाना, सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

पाई साचे सृजनहारा जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दस पेटिया गुरपुरा नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया सुख दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै विनाशे सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है इक हर बलराम जियो।

जल थल मैयल पूरन स्वामी कट कट रहा समाया जिस ते उपजिया तिस माए समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न

गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे।

वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजे हाथ पैर तुते आई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अट गहर गंभीरा, तुम फिर हम दोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम। हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे।

तू करवत मेरा ओला राम हूँ बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा साजन पोत सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जम पंख सा दे दुख ना व्यापे कोई जल थल मई अल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा की जय नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सह सियाना कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किछु तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा।
सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर जो गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नींव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मन उठाराम गुरुमुखे सच करने सारी बिन से प्रम पैच उठाराम अमहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंकन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर में नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच करम पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई है सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्क पल सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहु न मरिये चूके आवन जाना जो किछ करे सोई पल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आ गए तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कहो नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ पया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन, अनहद बाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बोर न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सुही महला पंजवा, संता के कारज आग खलोया, हर काम करावन आया राम। तरक सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाखे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध

परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली कर पार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची कर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती के तेरा सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमत लालो लाल है जो रंग मजीर सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखनी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले कतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सोहरे बहु सोगा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहे रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाय को आई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

तू है वेश फिर किने न पायो, मन मुख बज मोई गवार। सतगुरु मिले सू है वेश दया, हो मैं विचो मार। मन तन रता लाल हुआ, रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन, पै पाए करे सिगार। नानक करमी महल पाया, फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा पर हरो, लाल करो सिगार। आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोनी, जिस कर सहज पतार। नानक सातन रावी है, रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है, मन मुख मुग्ध रता। हो मैं मेरा कर्म हुए, किस साथ न लिता। सिर ऊपर जम काल न सुजई, दूजे कर्मिता। फिर वेला हथ न आवई, जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन, से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन, जो मड़िया लग जलन। नानक सतिया जानियन, जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन, सील संतोख रहन। सेवन साई अपना, नित उठ संभालन। महला तीजा कंता नाल महेलिया, सेती अग जलाए। जे जाने फिर अपना, तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी, से क्यों अग जलाए। पावे जीवो कै मरो, दूरों ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया, लेख करते लिखिया। नावे जेवड होर दात नाही, किस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निधान है, गुरमुख मन वस्या। कर कृपा नाम देवसी, फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले, जिन हर जपिया।

जा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे सुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निबिव्या नानक एहो पटंतरा तित दी बाण गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता।

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पे गवारी जिनकी ये तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो तरे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजै तंत न आयो एवे पया विकार महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग सिउ हो मैं तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप छोड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाए पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहु मजूरिया मन मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह महला पहला उज्जल मोती सोहने रत्ना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर कै सब सलाइए।

क्यों ना मरी जा रोए जान लग चितना आवे महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालियो नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल न तमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुर प्रसाद अवसर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत

न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे करत सिगारा क्यों रलिया माँ ने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया पया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाथ दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसे सरेवो जब लग कट में सासा जे कट जाए ता पाऊ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर के पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी माँ पैना ही बोगस काला ले ही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई तरुण राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाऊ विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जियो की इको ओंकार सतगुर प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन दोए पख हीनी जिन नहा निरंतर पगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सुमार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। तन ऐसा जैसे काश की ताटी,

गयो पास रल गयो माटी रहा पाई बंद कुतंब सहेरा कोई भी लागे काट सवेरा कर की नार उन्हें तन लागी ओ तो पूत पूत कर पागी कह रविदास सब जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राजसूही।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जोगन खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जा।

जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना पौका इस तन पाई, भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे नौ न जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेश कलंदर, कठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म नावा। मन बेद्या

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलख अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, ऊंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मंगते मारिया, थाक रहे मन खाते पारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम कुले गौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सकते है, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली, सास विरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली।

कैद सुनत सबे सुख पावे मानत चाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल मारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाए हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुर ना फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई दर्शा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनध होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सहत्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम से आई। जय देखा तेरे समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे क्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ तो वै तोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करे ओ सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी रात कपना। हर दासन दास दास हम करियो जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर गति है वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा। कोय फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरव लिखे वड करमा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा।
ते नर पाघीन दो चारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल जुग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहा काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे त्यों बुलैनी। बिलावल मेला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकट मूड माया के बदक, विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नदरी आवे।

कर कृपा मोहि मार्ग पावो साफ संगत के अंचल लावो क्यों करिए बिछिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ परम चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से हर शोक से रहे निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्व पुयंगा हूँ मैं पते दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल सा गुरु मिलावे हूँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर किसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया किस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आप समाया बिलावल मैला कन्या सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगा जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने उठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोय अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोय निर्गुण ली जय लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नौ ही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै सं सदा प्रभ दसे प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम अवताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद राग बिलावल मेला पंजवा कर दूजा यानड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान का बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अरादिए निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुग्ध कौतारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होत जियो मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो नानक से दशोभा वंते जो प्रभ अपने कियो
हर चंदोरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसो वड़ पागणी सखिए संता संग समाई है कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाई है प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आई है दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अनग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए रहा अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल न जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़ पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे।

बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आपन दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जस जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिक ताना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ पागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रब तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिय, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द।

पर कृपा अपना नाम दीना रहाओ। अंध कूप से पर गह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीठा। चरण कमल सो लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत। जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहा, सफल जन्म होवत वट पागी। साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा। एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी। अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोह निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहा। भगत वचल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ जहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरम पर ठाकुर मेरे रहा। एक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ दिखिया फल चाखिया। तज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ, तन मन तन अपना कर थापिया। कर्म हार एक निमक न जापिया, महा मोह अंधकूप परया। पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया, वड्डे पाग सब कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई। नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद कणे। गुर पूरा पूरी जाकी बाणे, अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे,

पूरी तई सिमर सिमर विदाता। साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा। सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ, हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सातक नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चक मारो सातक बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फाक दले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा। कर चौथा दो पदे

रहा हो। ऐसी कृपा करो परम मेरे, हर नानक बिसरना साहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ पाप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैसवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महाविकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ, प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, काम के बंधन काटो परमेश्वर। नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वन तृण त्रिभुवन हरिया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल। रहा साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल। आपे सतगुर आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुणगान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे त्याई। नानक गुरु पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की। तिस आगे ही मारे कृपार, नानक दास ताकी सरनाई। जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसर जोग। आए बसो कर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना, ए पुर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख, पूरे गुरदीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु, कछ बिघन न थिया। जां का अंग दयाल प्रभु, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यो बालू कर बार, बिन सत बार ना ला गई। ज्यो कागद बूंदार,
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार रहाओ जैसा सुखना रहन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पगती लागो लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख करवागो हृदय प्रवास प्रगट कया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मत्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला तनवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्द तेरा पार जम गुण लि तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी बिलावल मेला तन्वा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद्गुण थे तुम बक्षण हारे रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे बिलावल महला तन्वा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा निरत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाए जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता

हेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आ गए पगे जब सात संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया सात संग हर हर अमरेत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दुखना एखिन में जारी दया मया अब निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ जगत सुधारन साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उकत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल तम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छट जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना।

आप संगत कै बास मैं कलमल सब नसना प्रभ से की रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ हर रस चाफल त्रापया मन रस ले हसना बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिरसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे

राज मिलक सुतवारियां अग्नि महजाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार ते बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगर ना होई साकत सुर पाव रेशमी तहड़ते पट खोई साकत स्यो मुख जोरे अदवी च्यों टूटे हर जन की सेवा जो करे इत ऊते छूटे सब कुछ तुम ही ते होआ आप बनत बनाई दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई बिलावल महला।

मत फूलो मानुख जन्माया परमाया, नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एह, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लियो के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ परपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एह, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वदा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गलत काज जन हुकम पछाता, ने बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते कई शांत पर सत पाप ना थे, अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आसा।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरह नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो।

रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मन है पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा, तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ परम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना जाते, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलवित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ताकि

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार, चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा को कृपा करो प्रभ ता को लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया बिस्माद की अमृत तृप्तास्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का

निंदक निंदा कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौशरनागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार के राखे गोपाल रहाओ। आशा परम विकार न हो इन महलो बाना, छूट समग्री

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मैला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया। जीव किया अथवा मोया।

चीत करता करे काम को काटे, कीवी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हमसे कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल में अला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना पला बसिया प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। वस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु।

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुर पूरा आरा गया, सगला दुख गया, राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ। बां पकड़ प्रभ का गया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापिया नाम।

जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाय नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर प्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समाग है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है। राम नाम जो जम जप है हम दिन सब जागे, पंत मंत नह जोई सिर चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग है, आनंद मगन रस

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुनी गहीर, नानक भगत आनंद में पेट प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हास रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाती सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाता वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम, नानक के शरणागति कट कट सब जान। बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभु उपजया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दिया एका।

बेनती सुन प्रभ आप रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोष हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ को सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

दात हाथ पैर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तम के जात। त्रिपद अघाय तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मैला पंजवा।

गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिलसे, पहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार, सब गुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार, रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिलसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठली खुली अनुपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेख्यो, कह न जाए वडे आई, मगन पे उहां संग।

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरन एक संपूरन, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंश ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्राव। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारयो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केश गहे फिर आवत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वडकागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमय। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, कह मेरे प्रभु तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को तिसकी लई लई सुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंग बंद अर सगल जंजारो। अवकाश ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखो मोहन सब कह संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निध। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

दुख परिया आठ पैर चितवे नहीं पहुंचा, बुरा चितवित मरिया। निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरिया। नानका राखा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करिया। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंध कूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ, त्यानप ते सब पई स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाऊं दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म

गुरु पूरे का जपया जाप। कहां करे कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सुमर सुमर सुमर सुख

महला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख ना व्याप है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुर ते पाए हो निधान जन्म मरण की कटिए फांसी साची दर्गे का निशान जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आहि। हर गुण गावत पर उपकार नित, इस रसना का मोल किछ नाही रहाओ। कुल समूह उदरे थिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते तहरा जंगा। कभू न बिसरह हिये मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल। मन तन अर्प रखो हर आगे, सर्व जिला का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न काची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय। साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे। आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड़ काज नहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात। सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पास रहाओ। काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य राज किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

आप पाप से राखे आप शीतल पर गुर चरनी लागे राम नाम हृदय में जाप रहो कर कृपा हस्त प्रभु जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप दुख दिन से सुख।

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पल्क पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर पे खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

जंग की करो प्रतपाला, आज पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पजन ना कीनो, करत विकार निष्फोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे पाई नीत रहाओ गई बिराद उपाद सब नासी अंगीकार कियो करकार सांस सुख और अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिस।

अनक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निर्तन तन पायो प्रभु नानक अनक।

उलझियो अलमकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक हर ला है अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस कूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मेला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत।

ना है। तुम नर जन्म अकाल खोया, यह राखो मन माही रहा, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे एहो मन पुन पाप कुचरे माया मद माके तृप्त ना आवे तृप्त मुक्त मन सा

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंडाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

पावो। आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी। साचा नाम साचे सबद जाने, आपते आप मिले।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरुमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरुमुख आपके अलग।

ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ।

तो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते त्रिपत न पै।

प्रसादी मैं अकथ कथैया। मनमुख माया मोह व्यापे यो मन कृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुरु शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आगे अनहद।

जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा। सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़या। अमर पिंड पहल साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो।

आसा आस करे नहीं बूझे, गुर के शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होआ, मन दे जिस चल चल गवन करैया। प्रभवन करे बूझे नहीं कृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सुखे बहुत तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध।

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वचल अंगीकार करैया, नानक शरण।

चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे है जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृद अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया। हिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया।

पंच भूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर

रहे हैं। डर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहया लिवे।

कै शब्द हर गया समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपके सिर सिर तंदे लाया, आप बुझाए सोई बूझे, गुर के शब्द दर कर सूझे, प्रेम भगत करे लिव लाए, हो मैं ममता शब्द जलाए।

आप गवाया, नानक नाम रखो उधार, देवन हारे को जयकार। वीर वार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए,

खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुवाए।

जीजंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर सेवै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने, सतगुर पे ते ता एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मारना का कह कोए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मारना का कह कोए, साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे देवड़ियाई, किसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे, डर किसका होए, गुरमति सांत वसे शरीर।

मुंड नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकीदार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर को रही गोयल, सहज सब पिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग बासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगतूती, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। मिलावल मैला पहला मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रब अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोचिए, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर कूटड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मा

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंस नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

मेरा प्रभ अगम अथाह सा अटल गणया पूरन संजोगो राम सुख समूपया गया विजोगो राम मिल संत्याए प्रभ त्याए बने अचरज जांजिया मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंस विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंश नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंगुल वजे बाजे बिन श्रेय उमा तै रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत परे पंडारा बिन वंश नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है गय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज मन पागी है पगत सगौरी पाए मोह है अंत कथु न पाए बिन वंश नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिसमन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर गय पूजा गही कट जम की साथी राम गय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अधोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिन वंश नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंश नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पार दिखा रहे ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे गृह बने तीर वर्त पूजा बात काटे जोनी नानक पयम पे दया तारो मैं नाम अंधले तोहनी मुहे अनाथ पे अनाथ जो जानो त्यों रखो चतुराई मोहे नाहे री जावो कह मुखो मैं चतुर सुगर सुजान दे।

सगल जा को करना पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सर है मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंधारे जो आख चकवी दिन चरे नानक पयम तै प्रिय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रस्तना नवल नव तन नाव बाल।

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभु चेते है नानक सुखी हो तिहु जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागिए जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुल चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टाश्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नाम नानक प्रभु शरणागति जप अनंत करंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम। वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछी ना राम। बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम। गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम। नानक

हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण उचरे हर हर हर उर निर्लाग। सब तन मन हरिया होया मन खिलिया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग। जन नानक जी।

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेविए तां दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तदा सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारिए विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिवलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत्संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वक्त भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सित कर खुद अपर कोई न सके सब चक चक पवे चढ़

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे।

जे वस्त मंगिए साई पाइए जे नाम चितलाइए गोहज गल सब गुरु पास ता सर्व सुख पाइए गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख ले जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संकोच हुआ सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैज पकड़िया गुर कहते सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे मानस के देवते पड़े सच्ची पगत जिस दे हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुग ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आ

पौड़ी। जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी। कूड़ियारा के मुख टिकिए सच भगत वध्याई, सच साहिब सचा न्याय है सिर निंदक साई। जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई, श्लोक महला तीजा। पूरे पाग सत गुर पाइये जे हर प्रभ बख्श करे, तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए। अंदर शीतल शांत है हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना नानक नाए वडे आई होए। मैला तीजा ते मन गुर की सुख सुन पाए गुणी निधान, सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान। नानक

किए, जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए, कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखन बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक छो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दूख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी, जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रात ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया अंगने नाम से आया, दिखिया माए उदास है हों में शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सत्य से लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण पुल्ले हों में मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चितलाया।

अवर न कोय गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना कट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचो जाए जो किस हुए।

सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए। महला तीजा काल मार मन सामने समानी अंतर निर्मल नाओ। अंधन जा गए कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जले हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जे कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले। अपे कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हक आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कैसी बने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चह कुंडा विकाला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना

किस सात गिरास सदा मन वसे, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसे, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया, रस संत जना से तिस कौड़ी। जो बोले पूरा सतगुरु तो परमेश्वर सुनिया, कोई वर्तिया जगत में कट कट मुख पनिया, बहुत वड्याईया साहिब है ने जाई गलिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे जो बनिया। श्लोक पहला तीजा, अपना आपना पछाण ही हर प्रभु जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर, मनमुख जन्म गवा।

गुरमुख नाम गोविंद अंजन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मन तन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मी उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होई जा।

सुदे सुदे रे चलो तुम नतर को तक्का गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा तीनों मीच बिलैया खई है रे तनमंता अरने तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहाओ आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात सुना तजी न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का के जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित पुट कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज दिन राखी हरनाशक नख बिद्रयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन

पवन पर छा जा, हाथ पसार सके पूजन को, बोल सके ना अंदाजा। चेत अचेत मूर मन मेरे, बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसा परम क्यू को, रूपे लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी, शील तरम जब पगत न कीनी, हो अभिमान तेड पगरी रहाओ, अमर जान संखी एकाया, ए लिखिया का की जगरी, जिन्हें निवाज साज हम किए, किसे विसार अवर लगरी, संगत तोय साध नहीं कहियो, शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए गिनती सुनियो, मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार, कुछ दिन सुर्ख करे को मेरी, दर्शन दी जय खोल किवार, रहाओ तुम तन तनी उदार।

संसाधारी क्रम कै पाए पवे तेत तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुरु साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप आपते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निध ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तोले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

दास भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, हस्त दशा सिद्ध करतल।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिखोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे कुरैन पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जगयोए।

दे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर तै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिरथी जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटम सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करें ए बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब चढ़ाई। जो कुछ आस

दिन में चूट दिन सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खुन में किलिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह ना

बहुत कदाचार। अपनी दृष्टा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी दृष्टा अवरा।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिन सजाए ज्यो रंग कुसुम्भ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैश चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासों मन क्या चोरई है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चीज सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन साम

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भाए ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ अवाए ले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जाए ले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुम्बाए ले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाए ले, जैसे मीन रसन साध बिनस्यो।

तांके से तक गने। लाल नाम जाके परे पंडारे, सगल कथा देव है आधार। सतपुरुष जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमुख जस गाओ। बाल सखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा, नाम संग सीनो व्यवहार। नामो ही इस मन का आधार, नामो ही चित कीनी ओट। नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम। मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात। नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो दीठा। नामे दरगे

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राओ जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किछ करे सो आपे करे, जा का अंक ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पावन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बाँछे संसार, कोट पतित जाके संग उधार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुर के शब्द मंत्र मनमान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहा, पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्द मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाई, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ, गुर

काले पुरख भगवान गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बोहित तारे पव पार, गुरु सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु पूरा ताये वड़पा।

ताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भये जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबते ऊच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का मैल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत पोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत भी आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभसार दिन पगती सब होए खुआर गौन महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी।

पगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पन्नवा गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इत्पंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, पद अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल, कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगैर वाला, हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवे प्रभ नाम। गौण महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुरसो प्रसन्न पै वड पाग, आठ पहर गाये गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पै आनंद, पार ब्रह्म पूरन बसंद, कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिलाए, कर्म कर्म इह तत् ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम, सागर कर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल।

हैं, कट कट अंतर सर्व समाहे। अपने दास का हल्क पलक तुम्हारे, पति पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करी।

कोई न सके जमकाल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूर्ण मंत, हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत, मां विचार पंच दूते मंत, तो शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिम

सिदारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

गायन बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल खान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुरु कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दफ्ता

कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले। मोहि बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो, रहाओ पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर में तन

पालो सात हथ ना तोड़े तरह ध्यान वहां कह हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोत कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी। ना इस पिंड ना रत्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंधन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बात हमको साथर उनको खात। मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश।

शंख को बिख बिछे संसार, कर सीगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी, संत पाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओ पिंड परायण, हमको दिष्ट परे त्रकडायण, हम तिसका बोध

अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ। जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार राव। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अतरूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन कैसाद राव। जपिए नाम जपिए अन, अम्बे के संग निकावन।

जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्ने बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौण बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद, असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने, तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ, गया पिंड परता बनारस अफबस्ता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सिवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं, गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो।

इन पाया गुर पोतक अलख लिखाया। जैसे दिखे हो तु पर नारी ऐसो नामे प्रीत मुरारी। जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। राग गौंड बाणी नाम दियो जी की कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटो सब परमा। हर को नाम ले उत्तम कर्मा। हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंगले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे। रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण। अजय मल की ओ बैकुंठे थान। सुआ परावत गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी। हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपटे परी। सिमरन द्रौपद सुत उदरी।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपाने। गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव। पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा राम।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे ओ अवसर।

आद का निंदक कैसे परे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल फेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाद विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़

जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व जोत तेरी पसर रही जय जय देखा कह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे मेरे आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिद सागर परिय जीवतिया न मरिय रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे

है आत करे जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले इन विद सागर तरिये जीवतियां यूं मरिए रहाओ दूजा राम करी महला पहला सुरत शब्द साखी नृसिंगी बाजे लोक सुने पचोली मंगल कहताई पीठिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम करी महला पहला सुन मा छिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाज समावे रहाओ पिछिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

सन्मुख सिद टोचन को आए निचो देव दयाए गुर पार पारण हारिया जो भगत पूरन अविनाशी हों कुछ को बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन आया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मैला पहला सुरती सुर कर लाये एक तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सचिया गल्ला दर किया बाता, कहता कहन कहाया, राम कली मेला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कौन बुझे बिग जाने, उत्कुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, किसते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गतमित और न जाने, गुरबिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में त्यान त्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जहाँ हर प्रभ कृपा तारी, ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभ पावे, एन भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे, रहाओ, तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाग देद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी, तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे, खुदया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी, गुरमत पत कोई।

दिह तारी राम कला निभे पत सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

खाए कोई। सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे। गुरमुख भगत करो सब प्राणी हृदय परदास होवे लिव लागे गुरमुख हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवे हर मानक बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक तिन गुरमत कड़ कड़ लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर कार तली दिखलाया। पागहीन मन मुख नहीं लिया तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब दीकल सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सोहाए। रहाओ जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे नर निंदक दंश लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभ पाए कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन

जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां तुल न लाई है हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित न लाई है राम मोको हर जन कारे लाये हौ पानी पखा पीसो संत आ गए पग मल मल तूर मुख लाई है रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊचे जो सतगुर मेल मिलाई है सतगुर जेवड अवर न कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर शरण परे तिन पाया ने ठाकुर लाज रखाई है इस अपने स्वाये आए बहे गुर आ गए जो बगुल समाज लगाई है बगुला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम करी महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुरचरणी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम में हर हर नाम मन पाया मैं हर दिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सखाया रहाओ मेरे इच्छुन प्राण न रहे बिन प्रीतम दिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड पाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जपाया नामहीन फिरे से नकते तिन कस कस नक वडाया मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी रिद अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर्धारे जी दान गुरपूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तिस्त्यावे ताका अंत न पावे पारे हृदय काम काम नी मांगे हृद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वडा वडेरा गुरमुख रखो उरदारे जे वड पाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट विकट हर जन है हर रात है कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर प्रत पारे राग राम।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साथ की।

पंथ छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो, इन विद तत् बिलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहज मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतरी सगल बेगनी, ए विद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी, रहाओ सुर्ग पवित्रा।

वासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी रामकली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

पूरन हम भी संग अधाए मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजै र बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

कोई ओढ़ नील, कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे तुस्त, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन।

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंग ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई। जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला। नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर। क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई। राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई। आन न दिसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना। गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा। गुरमुख किने विरले बीठा, राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम। पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी। अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा। सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा।

आज हमारे पूरे सतगुरु बाजे अनहद तूरे सतगुरु रहाओ महिमा जा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस पीर जाके बंधन काटे राय सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दयाल कहो नानक प्रभ मिले रसाल राम कली मैला पंजवा।

अब मोह जानी रे मेरी दही बलाए, बुझ गई कृष्ण निवारी ममता, गुरपुर लियो समझाए रहाओ, कर कृपा राखियो गुर शरणा, गुर पकराए हर

नीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई कर पार जिसे सहाय होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत महिमा ताकि

संत जनी परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब पूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सातत इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे तो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस

अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन।

धारे नीचल आसन बेसुमार डिगना डोले कतहु धावे गुर प्रसाद को।

मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संत संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास गैर गंभीर।

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना दुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

मन अटल ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा बिन हर

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरु पूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान

इसे त्याग सत्संगत करे, वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व में पेख, पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान, अपनी वस्त तू आप।

रैन दिनस जपो हर नाओ आगे दरगे पावो थाओ सदा आनंद न होवी सोग कभू ना व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा परम।

पूंजी सुन समाध गुफाते आसन केवल ब्रह्म पूरन ते बासन भगत संग प्रभ गोष्ठ करत ते हरख ना सोग ना जन्म।

मन ओट बंधनते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद तारण तरण हर शरण।

तज अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरु का जप मंत निर्मल रहाओ।

बूढ़त लो साध संग तर नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुर यो दीनो मंत मिटे सगल पैत्रास पूरन होई आस सफल सेवा गुरुदेवा कीमत किछ कह न जाई साच सच अलख।

अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर केते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे, कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर शरण। मन

मानक तिसकी परम गत होए राम करी मैला पंजवा दर्शन को जाइए कुर्बान चरण कमल हृदय कर ध्यान तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस पेट

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

से बैसंतर पा गए, माटी को जल बैदिस त्याग, ऊपर चरण तले आकाश, काट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

एक त्याय है साध कै संग पाप बिना से नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रव रहा गुणतास दर्श दे तारो प्रभु आस नित नानक चितवै।

छिन छिन औद कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे रहाओ। तरना पो भिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे।

वर्त कपन कर मन नहीं पीजे। राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तत्व विचार, राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया। तन तन देखत

हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुरु शब्द न गत पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

जो भी सह सब सह मया आज पुरख अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए कोरो में किसे सुनावे पैसा गर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए।